यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

उत्तिष्ठ कृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम् श्रीरौप्यपीठपुरभूषणलिङ्ग मध्ये व्यक्तोऽस्यनन्तशयनः किल पद्मनाभः।

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केली वेणुधोनी 90.4 FM वरती तुम्ही ट्यून इन आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: सकारात्मकता का महत्व. मान लीजिए किसी को कड़ी प्यास लगी हो, ऐसे में किसी को आधा गिलास पानी मिल जाए तो एक व्यक्ति ये कहकर निराश हो सकता है, हाय गिलास तो आधा खाली है. लेकिन इसके उल्टे कोई ये भी तो कह सकता है, वाह भाई वाह, कम से कम आधा गिलास पानी भरा तो है, ये हुई ना बात. वास्तव में ये है सकारात्मक सोच का चमत्कार. निराशा के गहन अंधेरे में व्यक्ति को महान आशावादी बनाने वाला श्रेष्ठ सद्गुण है सकारात्मकता. सकारात्मकता अर्थात निराशा पैदा करने वाली स्थिति में भी मन में आशावादी विचार पैदा करना, प्रतिकूल माहौल में अनुकूल अवसर तलाशना, कमी कमजोरी को देखते हुए भी अपनी नजर केवल गुणों पर लगाए रखना, बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेना, करने योग्य काम करना और न करने योग्य काम नहीं करना, ये हुई कर्मों की सकारात्मकता. लेकिन इसके विपरीत जो काम हमें नहीं करने चाहिए वो करना या फिर जो काम हमें करने चाहिए वो न करना, ये हुई कर्मों की नकारात्मकता. जब मनचाही बात नहीं होती है, कारने अकारने जब अवसर नहीं मिलते या चारों ओर हेरा फेरी या भेदभाव का आलम होता है, तब मन ही मन अपयश हार व हानि का दोष दूसरों के सिर पर हर कोई मढ़ने लगता है. लेकिन इससे क्या माहौल बदल जाएगा? जब परिस्थिति या लोगों को बदलना हमारे वश में नहीं हो तो खुद को बदल जाना ही बेहतर समाधान होता है, यही सकारात्मक परिवर्तन है. बिना स्वयं के परिवर्तन के परिस्थिति पर जीत पाना भी संभव नहीं. सकारात्मक परिवर्तन बदलते परिवेश की मांग है और हर समस्या का समाधान भी. हर चुनौती का सामना सकारात्मक सोच और कर्म से ही हो सकता है. सकारात्मक सोच व्यक्ति को हल्का बनाती है. चिंता, उदासी, टेंशन, डिप्रेशन का इलाज केवल सकारात्मक बदलाव से ही संभव है. सदा उमंग उत्साह से भरपूर होना है, हर कदम में जीत का दावेदार बनना है तो चाहिए भाई सकारात्मकता. अतः सकारात्मक बनिए और सफलता के सोपान चढ़िए, यही हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं.

0: रेणुधुनी 90.4 एफएम केएलई घनसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
3: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
4: याचिकाओं में एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि एसआईआर प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि एसआईआर प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
5: CBSE बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग समथिंग टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
5: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
6: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मानसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
7: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

माँ बनने में हो रही है देर, इंतजार है खुशखबरी का। There is one name you can trust, KLE Fertility Center. With science, soul and sensitivity, जिंदगी को दो नई शुरुआत KLE IVF के साथ। आज ही विजिट करें KLE Fertility Center, OPD number 97, शरावती सेकेंड फ्लोर, KLE's डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल एंड MRC बेगावी। फोन नंबर 08312551530 and 247377, extension 1530.

0: नमस्कार, आप सुन रहे वेणुधुनी 90.4 एफएम केएलई कनसू। आज के इस विशेष प्रोग्राम में मनीषा आपका स्वागत करती है। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुबर्णा रॉय, जो आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन के डायरेक्टर एवं साइंटिस्ट है। आईसीएमआर एनआईटीएम बेलगावी भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और आधुनिक चिकित्सा के समन्वय पर कार्य करने वाला देश का एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। डॉक्टर सुबर्णा रॉय के नेतृत्व में संस्थान ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुष, इंटरग्रेटिव हेल्थ केयर तथा पब्लिक हेल्थ रिसर्च के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर, हमारे वेणुधुनी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: सबसे पहले तो अपने बारे में और अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों के बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: मैं डॉक्टर सुबर्णा रॉय हूँ। बाई ट्रेनिंग मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, एमएससी पीएचडी, और आईसीएमआर का मैं पिछले 20 साल से आईसीएमआर में काम कर रहा हूँ। आईसीएमआर एनआईटीएम जो है, जैसे आपने बताया, ये हमारे पारंपरिक चिकित्सा विज्ञान संस्था है, जो आईसीएमआर का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, जो इंटीग्रेटिव हेल्थ में काम करते हैं। बेसिकली हम लोग सब मॉडर्न साइंसेस बैकग्राउंड के साइंटिस्ट हैं, और हम लोग जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके ऊपर शोध करते हैं। जैसे कुछ आता है जो आयुष के अंडर आता है, आयुर्वेदा, सिद्धा, उनानी, स्वारिकपा, नेचुरोपैथी, योगा, और कुछ होते हैं जो इसके बाहर का भी प्रैक्टिस होता है, जो दादी माँ के नुस्खे टाइप का, जो हम लोग घर पे यूज करते
0: home
1: हैं, होम रेमेडीज, या फिर जो ट्राइबल हीलिंग प्रैक्टिसेस है, जो गांव में लोग यूज करते हैं, ट्राइबल हीलर्स होते हैं, पर्टिकुलरली ट्राइबल एरियाज में, ट्राइबल बेल्ट्स में होते हैं। इनमें से भी बहुत सारे ऐसे जो शोध है, जो इसमें से ऐसे बहुत सारा सॉल्यूशंस है जो एक्चुअली इफेक्टिव है, और उसके लिए जो शोध है वो हम लोग करते हैं, और जो स्टडीज हम लोग शुरू करते हैं वो फील्ड से शुरू होता है, जो कोई इसका प्रैक्टिस होता है या फिर जो आयुष से आता है उसका लेते हैं, करके उसका सेफ्टी स्टडीज करते हैं, उसका टॉक्सिसिटी का स्टडीज करते हैं, उसके बाद उसका मॉलिकुलर मैकेनिज्म हम लोग डिटरमाइन करने का कोशिश करते हैं, जो उसका केमिस्ट्री है, जो अगर पौधों से काम होता है तो ये पौधों में क्या क्या कंपोजिशन है उसका करते हैं, सीजनल वेरिएशन का करते हैं। उसके बाद हम लोग जाते हैं हमारा एनिमल स्टडीज के ऊपर।
0: अच्छा।
1: तो एनिमल्स के ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, शोध करते हैं, और जो अच्छे जो लीड्स मिलता है उसको हम लोग आगे लेके क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं ह्यूमंस के ऊपर। वो होता है हॉस्पिटल्स में, और कुछ होता है कम्युनिटी सेटिंग्स में, डिपेंडिंग ऑन कौन सा डिजीज के लिए कौन सा दवाई है। और इसमें हमारे मॉडर्न मेडिसिन के लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, इसमें बेसिक साइंटिस्ट है जो एमएससी पीएचडीज है, इसमें हमारे बायो इन्फॉर्मेटिशियंस है, इसमें केमिस्ट है, सोशल साइंटिस्ट है, कम्युनिटी मेडिसिन के लोग हैं। तो ऐसे बहुत सारा डिसिप्लिन हम लोग एकत्रित होके ये वैलिडेशन साइकिल हम लोग खत्म करते हैं।
0: अच्छा।
1: और जिसमें अच्छा जो रिजल्ट्स आएगा क्लिनिकल ट्रायल्स में, इंटेंशन ये है कि वो एक्चुअल प्रैक्टिस में बदलाव आए। सो इट विल बिकम कॉस्ट इफेक्टिव एंड मोर इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ इट्स एफिकेसी आल्सो। सो ये हमारा इंस्टीट्यूट का काम है।
0: अच्छा, उसी के साथ सर, आईसीएमआर का उद्देश्य क्या है मुख्य?
1: आईसीएमआर भारत का जो प्रीमियर हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, वो प्रमुख हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसका शुरुआत हुआ था 1911 में। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज इन द वर्ल्ड। आईसीएमआर का जब शुरुआत हुआ था, इसका नाम था आईआरएफए, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। तो इससे जो फर्स्ट शुरू हुआ काम, वहाँ का वो टाइम का जो भी हेल्थ जो डिजीज था, जो प्रॉब्लम्स था, उसको आइडेंटिफाई करना और उसके ऊपर उसका सोल्यूशन निकालना।

0: एनालिसिस से शुरू हुआ था, फिर रिसर्च फंडिंग भी एक मेजर एक्टिविटी था जो नॉन आईसीएमआर इंस्टीट्यूट्स को फंड्स दिया जाता है, तो ये फंडिंग बॉडी के रूप से भी काम करता था और अभी भी करते रहे हैं। सो अभी जो मेन आईसीएमआर का काम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च है उसके अंतर्गत आता है। आईसीएमआर का 28 इंस्टीट्यूशंस है अक्रॉस द कंट्री। कुछ है स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स जो कोई एक एरिया के ऊपर या एक डिजीज के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि हमारा चेन्नई में ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर काम होता है NIRT में, हमारा मुंबई वाला इंस्टीट्यूट जो है जो वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, देन हमारे इंस्टीट्यूट है पुणे में जो वायरोलॉजी का है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वायरल डिजीजेस के ऊपर काम करते हैं, ऐसे हमारा इंस्टीट्यूट है जो बेलगाम में है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर काम करते हैं। ये छोड़ के और भी हमारे कुछ इंस्टीट्यूट है जो रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता था, अभी उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च NIHR। सो ये डिफरेंट लोकेशंस में स्थित है और वो जो रीजन का जो प्रॉब्लम्स हेल्थ रिसर्च प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशंस निकालते हैं, एंड देन पूरा नेशनल लेवल पे भी जो मेजर जो डिजीजेस है या प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर भी शोध करते हैं। तो अभी हमारा जो ICMR का जो मेन फंक्शंस है वो है पूरा जो कंट्री का हेल्थ रिसर्च इकोसिस्टम इसके ऊपर काम करना, नए टेक्नोलॉजीज लाना, नए दवाई निकालना और पॉलिसी गवर्नमेंट को पेश करना। सो पॉलिसी विल कम ओनली आफ्टर एविडेंस। तो हम लोग रिसर्च एविडेंस में डेटा जनरेट करते हैं और उसी को ही हम लोग पॉलिसी करके गवर्नमेंट को देते हैं। सो ये हमारा ICMR का मेन फंक्शन है। ये हो गया ICMR का अपना सेटिंग में।
1: अच्छा।
0: लेकिन ICMR जैसे मैंने बताया कि इट इज ऑल्सो अ फंडिंग बॉडी, तो जो भी हेल्थ रिसर्च दूसरा इंस्टीट्यूट में होता है, आप चाहे केली में ले लीजिए कि एम्स में ले लीजिए कि CMC में ले लीजिए कि और भी कोई भी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, इसका जो अच्छे अच्छे जो इनिशिएटिव्स होता है रिसर्च का, इसका फंडिंग होता है। तो इसका एक मैकेनिज्म है, इसका पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन आता है, उसको रिव्यू होता है, प्रोसीजर है, उसके हिसाब से प्रायोरिटी और जो जिसका ज्यादा सोल्यूशन आने का चांसेस ज्यादा है उसको फंडिंग मिलता है। सो इसीलिए ICMR इज एक्चुअली द एंटायर हेल्थ रिसर्च ऑफ द कंट्री इज काइंड ऑफ ICMR।
1: भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में ICMR की भूमिका कितनी इम्पोर्टेंट है?
0: जैसे कि मैंने बताया कि हमेशा ट्रीटमेंट पॉलिसी सब कुछ डिपेंड करता है डेटा के ऊपर, एविडेंस के ऊपर, और ICMR वही एविडेंस जनरेट करता है, चाहे उसका अपना इंस्टीट्यूशन से हो या फिर जो उसका कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूट्स है या फिर जो इंस्टीट्यूशंस को फंड किया गया है, जो मेडिकल बॉडीज है, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, उन लोगों के ऊपर। तो ये सब इकट्ठा करके एविडेंस तैयार होता है और एविडेंस डिटरमाइंस पॉलिसी। नए ड्रग्स, नए ट्रीटमेंट रेजिम्स, न्यू टेक्नोलॉजीज, अभी ये सब ICMR हेल्थ रिसर्च में इसका कंट्रीब्यूशन करता है कंट्री के लिए।
1: वर्तमान समय में सर ICMR किन प्रमुख स्वास्थ्य क्षेत्रों पर काम कर रहा है?
0: ICMR इंडिया का इंडिया सेंट्रिक जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर काम करते हैं। इसमें एक हो गया कम्युनिकेबल डिजीजेस, दूसरा हो गया नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो मेजर एरियाज ट्रेडिशनली था, उसके ऊपर से अभी नए प्रॉब्लम्स है जैसे कि कैंसर का बहुत महत्व रखता है, अभी नए चीज़ें भी आ रहे हैं जैसे कि एनवायरमेंटल हेल्थ, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब का भी हेल्थ इम्प्लिकेशंस आता है। तो ये सब 360 डिग्री ऑफ हेल्थ रिसर्च इज डन बाय ICMR और फोकस उसमें ही रहता है जो नेशनल हेल्थ प्रायोरिटीज है, जो गवर्नमेंट डिटरमिन करते हैं कि ये हमारा प्रायोरिटीज है, तो उसके ऊपर ICMR काम करते हैं।
1: भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में क्या ऐसे बदलाव आए हैं?
0: ये जो स्वास्थ्य का जो इश्यूज है ये भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। पहले बहुत सारा कम्युनिकेबल डिजीजेस का बर्डन बहुत ज़्यादा था,
1: बिल्कुल,
0: जो दवाइयाँ आने के बाद या फिर दूसरा टेक्निक्स आने के बाद वो थोड़ा कम हुआ था। इंसिडेंस बढ़ता गया, जैसे कि अभी हाइपरटेंशन जो ब्लड प्रेशर है या फिर डायबिटीज ले लीजिए, कैंसर्स ले लीजिए, ये बढ़ रहा है। अभी इन्फेक्शस डिजीजेस पहले जैसे उतना खतरनाक तो नहीं रहा, लेकिन प्रॉब्लम है जैसे कि कोविड का पेंडेमिक आपको देखने को मिला, अचानक कभी भी कुछ चीज आ सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, अभी हम लोग जब एंटीबायोटिक लाए, एंटीबायोटिक वॉज द मेन रीजन वाई वी हैड लेस बर्डन ऑफ इन्फेक्शस डिजीजेस इन द पास्ट, लेकिन अभी मोस्ट ऑफ द जो बैक्टीरियल पैथोजेंस होता है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। नॉर्मल जो एंटीबायोटिक अवेलेबल है उसमें काम नहीं होता है, और हमारे पास ज्यादा एंटीबायोटिक्स है नहीं, तो बड़े हॉस्पिटल्स में टर्शियरी केयर

0: सेंटर्स में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो रेजिस्टेंट है सब ऑर्गेनिज्म में, उसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो ये नए चीजें हैं जिसके ऊपर इन्फेक्शियस डिजीज में काम होता है, और जो नॉन इन्फेक्शियस जो है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, उसमें ये हाइपरटेंशन है, माल न्यूट्रिशन है, डायबिटीज है, कैंसर्स है, जिसके ऊपर हमारा रिसर्च बढ़ाया गया है। और नया जो है वो है, जैसे बताया अभी, वन हेल्थ कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसमें हम लोग वेटरनरी, एग्रीकल्चर, ह्यूमन हेल्थ सब एक साथ देख रहे हैं। हम लोग एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी इसके साथ लिंक्ड है, क्योंकि हम लोग अगर ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, ज़्यादा एंटीबायोटिक्स पोल्ट्री में कि कोई फार्म एनिमल्स में यूज़ करते हैं, तो ह्यूमन चेन में भी आ जाता है। तो उसको कैसे, उसको रोध किया जाए, उसके ऊपर भी काम होता है। सेकेंडली है द यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। अभी बहुत कंप्यूटेशनल बायोलॉजी बहुत बढ़ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज आया है, तो इसको हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हमारे सॉल्यूशंस ढूंढने में, और इट बिकम्स मच इजियर टू एक्चुअली मैनेज एंड इवन डिज़ाइन न्यू इंटरवेंशंस।
1: स्वास्थ्य अनुसंधान से आम नागरिकों को क्या लाभ मिलता है?
0: एविडेंस से ही पॉलिसी और ट्रीटमेंट डिटरमाइन होता है। जब तक हम लोग रिसर्च या स्वास्थ्य का अनुसंधान नहीं करेंगे, तब तक ये एविडेंस मिलता नहीं रहेगा, और ये भी चेंज होता रहता है। एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग। हर दिन नए नए इंफॉर्मेशन मिलता है, जो पेपर्स पब्लिश होते हैं उसका अपडेट होना बहुत जरूरी होता है, और उसके हिसाब से समटाइम्स ट्रीटमेंट में ऑल्सो चेंज, नॉलेज चेंजेस, तो उसका नए नए तरीके आते हैं। जैसे मैंने बताया टेक्नोलॉजी, सभी टेक्नोलॉजीज आने लगे हैं। अभी जो शोध बहुत साल लगता था, अभी बहुत जल्दी ये शोध होता है। सो टाइम ऑल्सो हैज काइंड ऑफ शॉर्टेंड फॉर गेटिंग न्यू ड्रग्स, न्यू ट्रीटमेंट्स, न्यू टेक्नोलॉजीज इनटू रिसर्च।
1: मान लीजिए सर कि कोई अगर नई दवा आती है, तो उस पे उपचार पद्धतियों पर किस प्रकार संशोधन या फिर शोध होता है?
0: अगर नए कोई दवाई आता है तो उसका भी एक आने का एक प्रोसीजर रहता है। सो बहुत सारे फेजेस बोलते हैं, वो उतर के फिर नए दवाई आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी दवाई जो एक बार ये सब जो फेजेस है ये उतर के आया, देन वो बहुत साल रहा, वो भी कभी कभी नहीं होता है।
1: अच्छा।
0: बिकॉज सेफ्टी इश्यूज भी रहते हैं उसमें। सो जो पहले स्टडीज में पता नहीं चलता है, तो वो पोस्ट मार्केटिंग भी मॉनिटरिंग होता है। सो ये जो स्टेजेस मैंने बताया, फर्स्ट शुरू होता है लेबोरेटरी के काम से, वो लेबोरेटरी में मॉलिक्यूल्स लेके या फिर कोई ड्रग्स लेके इसके ऊपर हम लोग इन विट्रो स्टडीज बोलते हैं, जो टेस्ट ट्यूब में करते हैं। उसके बाद आता है एनिमल स्टडीज, हम लोग नॉर्मली छोटे एनिमल से चालू करते हैं।
1: अच्छा।
0: कभी कभी ज़ेब्रा फिश में करते हैं, क्योंकि एथिकल रीजन, हमें सबका एथिक्स का जो स्टैंडर्ड्स है वो मान के ही हमें करना पड़ता है, ताकि एनिमल लाइफ भी कम हो। तो वो लेके उसका अगर सक्सेस होता है तो वो जाता है एफिकेसी स्टडीज में, तो वो कितना इफेक्टिव है एनिमल्स में वो स्टडीज हो जाता है। वो होने के बाद फिर जाता है क्लिनिकल ट्रायल्स में, तो जहाँ पे एक्चुअली ह्यूमंस के ऊपर ट्रायल्स होता है, उसमें बहुत सारा फेजेस आता है। फर्स्ट होता है फेज वन, फेज टू, फेज थ्री। तो ये जो फेज वन है, ये बहुत कम लोगों, 10-15 लोगों में काम किया जाता है, और उसमें बेसिकली सेफ्टी देखा जाता है कि ह्यूमंस के लिए सेफ हो। एक बार सेफ हो गया, देन उसके बाद बड़ा स्टडीज किया जाता है कि हाउ गुड इट इज, वेदर जो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट है उससे बेहतर है कि ऐसे ही है कि ऐसा नहीं है। तो अगर उससे बेहतर है या फिर मोर कॉस्ट इफेक्टिव है तो आगे जाता है। तो फिर देन उसके बाद बड़ा स्टडीज होता है, इन लार्ज पॉपुलेशन, मोस्टली मल्टीसेंट्रिक स्टडीज होता है।
1: अच्छा।
0: तो उसमें देखा जाता है कि ये कैसे काम कर रहा है। देन एक बार वो हो गया, देन मार्केटिंग लाइसेंस होता है, देन मार्केट में आ जाता है। और उसके बाद एक फोर्थ फेज होता है जो बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग स्टडी। तो ये पोस्ट मार्केटिंग, मार्केट में आने के बाद वो रियल लाइफ कंडीशन में देखा जाता है कि लोगों का ऊपर कैसे असर कर रहा है।
1: अच्छा।
0: तो उसमें भी थोड़ा सा सेफ्टी का भी पार्ट रहता है कि हो सकता है कि बहुत सारा लोगों में से एक लोगों का कुछ एडवर्स इवेंट हो, तो लेकिन वो भी जानना जरूरी है ताकि हम लोग केयरफुल रहे कि अगर एक लेके थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ, कभी कभी रैशेस निकलता है कि
1: correct.
0: तो उसमें केयरफुल होना जरूरी है। तो ये होता है। ऐसे बहुत सारा हिस्ट्री में वर्ल्ड वाइड ऐसे ड्रग्स है जो पोस्ट मार्केटिंग के बाद भी विदड्रॉ किया गया बिकॉज ऑफ सेफ्टी इश्यूज। तो इसलिए ड्रग्स हमेशा सुपरवाइज्ड रहता है।
1: ओके। आज भारत में सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियाँ कौन सी है सर?
0: मैं इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट जो क्लासिकल है कम्युनिकेबल डिजीज का, इन्फेक्शियस डिजीज का, जो हम लोगों को कोविड ने दिखाया। अभी इबोला का एक आउटब्रेक चल रहा है जो WHO ने भी डिक्लेयर किया है। तो ऐसे कोई भी वायरस हो, बैक्टीरियल स्ट्रेन हो सकता है कि बहुत बुरी तरह से फैल सके। बिकॉज हम लोग आजकल बहुत ट्रैवल करते हैं, एक जगह में होता है तो दूसरा जगह में बहुत आसानी से आ जाता है, चाहे थ्रू शिप्स इम्पोर्ट्स हो, गुड्स हो, या फिर ह्यूमन से हो कि एनिमल से हो, आ जाता है। सो ये चैलेंज तो हमेशा हमारे पास रहेगा। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है इसका अगेंस्ट में ड्रग्स एंड वैक्सीन्स। तो क्योंकि हमें आइदर उसको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन्स चाहिए, नहीं तो उसको ट्रीट करने के लिए ड्रग्स चाहिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है इन्फेक्शियस डिजीज का। दूसरा है राइजिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। हमारा लाइफ स्टाइल की वजह से, कि हमारा फूड की वजह से, अभी हमारा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, चाहे हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स हो, मेंटल हेल्थ हो, ये सब हम लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसको, इसका समाधान ढूंढना उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये मल्टीफैक्टोरियल है। जो इन्फेक्शस डिजीज में है, हमें पता है कि एक ऑर्गेनिज्म से होता है, अगर उसको रोक सके तो उसको कंट्रोल में आ जाएगा,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ज़्यादातर केसेस में ये मल्टीफैक्टोरियल होता है। तो इसको कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना मेजर थ्रस्ट एरिया होता है। तो ये एक इशू है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो आ रहा है आजकल का रिसेंट डेवलपमेंट्स, जो क्लाइमेट चेंज के वजह से हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से इश्यूज है, एनवायरमेंटल हेल्थ पोल्यूशन, इसके वजह से नए नए प्रॉब्लम्स आ रहा है, या फिर पुराना प्रॉब्लम्स को और भी कॉम्प्लिकेट कर रहा है। स्क्रीन टाइम हमारा, डिवाइसेस, सो ये सब नए चीजें हैं जिसका इफेक्ट नॉट ओनली ऑन आवर फिजिकल हेल्थ बट ऑन मेंटल हेल्थ भी होता है। सो दीज आर न्यू चैलेंजेस दैट आर।
1: तो इन पे अगर हमें कंट्रोल पाना है तो हम क्या कर सकते हैं, या फिर क्या सलाह देंगे हम लोगों को?
0: अगर हम लोग ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बात करें, तो परहैप्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द बेस्ट वे फॉर प्रिवेंशन, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेस्ट। हम लोग तो हमेशा बचपन से सुनते रहे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो ये जो प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमारा फर्स्ट फॉरमोस्ट हमारा लाइफस्टाइल, मोबिलिटी बढ़ाना है, एक्सरसाइजेस करना है, जो डाइट हम लोग ले रहे हैं, अभी बच्चे तो फास्ट फूड के ऊपर ही ज़्यादातर डिपेंडेंट रहते हैं। हेल्दी फूड्स जो है, हमारा जो ट्रेडिशनल फूड्स जो है, चाहे कोई भी रीजन का हो, हफ्ते में कितना दिन वो एक्चुअल ट्रेडिशनल फूड्स लेते हैं, बहुत कम लेते हैं। लेकिन इसके वजह से क्या है कि जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स है उनको मिलता नहीं है। इवन सप्लीमेंट्स भी लेंगे तो भी वो जितना हम लोग नेचुरल सब्सटेंस से मिलता है और जो उसका मेटाबॉलिज्म होता है उतना होता नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर ध्यान देना है। स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है, आजकल बहुत लोग स्लीप डिप्राइव्ड है। बच्चे अगर बहुत पढ़ाकू है तो रात को जाग के पढ़ते हैं, लेकिन उसका एक्चुअली इफेक्ट होता है अपने सेहत के ऊपर, तो वो भी ध्यान देखना चाहिए। सेहत है तो भी पढ़ाई होगा,
1: बिल्कुल।
0: देन आता है एडिक्शन, ये एक मेजर इशू है। तो एडिक्शन बहुत तरीके होता है, इसको मैं स्क्रीन एडिक्शन भी मैं इसी में ही डालूंगा, क्योंकि वो भी एक एडिक्शन ही है, बहुत ज़्यादा मोबाइल फोन चलाना, देखना, कंप्यूटर्स के सामने। इवन जो प्रोफेशनल्स है, हम लोग ज़्यादातर आजकल जो वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स है, कंप्यूटर्स के बिना तो चल नहीं सकते, हमेशा कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, तो उसका भी इफेक्ट होता है। सो ये सब कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनली स्ट्रेस, अभी शायद हर कोई स्ट्रेस में रहता है, यू cannot find anybody who is not under stress. लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए we have to learn to cope up with stress and manage them well.
1: Okay. उसी के साथ सर, आजकल हम देख रहे हैं कि डायबिटीज हो या फिर हाइपरटेंशन हो और हार्ट अटैक भी, ये सारी जो समस्याएं हैं वो भी बढ़ रही है, तो उसका क्या रीजन होगा?
0: मैं जैसे कहा है कि ये मेन रीजन है हमारा लाइफस्टाइल, और ये मल्टीफैक्टोरियल है, कोई भी एक फैक्टर से इसका हम लोग समस्या का समाधान ढूंढ नहीं पाएंगे, तो हमें पूरा होलिस्टिकली उसको देखना पड़ेगा। लाइफस्टाइल हम लोग जितना मॉडिफाई कर सकते हैं उसको करना है। जो कंप्यूटर में, जो डेटा सेंटर में काम करते हैं, उसको तो नहीं बोल सकते हैं कि आप कंप्यूटर के सामने मत रहो, उनको तो रहना है, लेकिन उसके साथ साथ उनका अपना सेहत का भी ख्याल रखना है। कुछ देर अगर वर्किंग पॉपुलेशन में है, फिट है, तो कुछ देर एक्सरसाइज करें। फूड, उसमें तो हर किसी का ध्यान होना चाहिए, वो चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो, अगर स्टूडेंट हो कि रिटायर्ड पर्सन हो, हेल्दी फूड इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन। तो उनका जो डाइट के हिसाब से जो अच्छा सूट करता है, लेकिन विथ ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स डिपेंडिंग ऑन देयर एज, वो लेना बहुत जरूरी है। अवॉइड एडिक्शंस, चाहे वो टोबैको का हो कि लिकर का हो कि इवन स्क्रीन का हो, ये अवॉइड करना चाहिए. स्लीप बहुत जरूरी है. दे शुड इंश्योर दैट दे हैव प्रॉपर साउंड स्लीप वट एवर टाइम पॉसिबल फॉर दम. थोड़ा सा अनुशीलन लाना चाहिए, अपने डिसिप्लिन लाना चाहिए अपने लाइफ में, तो ये इम्पोर्टेंट है.
1: बिल्कुल. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में. आप सुन रहे वेणुधुनी 90.4 FM KLE कनेक्शन.

0: KLE Society's Dr. Prabhakar Kore Super Speciality Hospital. Cure for all health-related problems. Experienced doctors and ultra-modern facilities ke saath. KLE Society's Dr. Prabhakar Kore Super Speciality Hospital and Medical Research Center. Nehru Nagar, Pelagavi. Call 08312-47377.
1: ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है. आपने ट्यून किया है केले वेणुधोनी 90.4 FM और एक विशेष प्रोग्राम हमारा शुरू है जिसमें हम सुन रहे हैं डॉक्टर सुवर्णा रॉय जो ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन के डायरेक्टर एवं साइंटिस्ट है. सर, बहुत से बातें हमने अब तक डिस्कस की. तो जैसे ब्रेक से पहले हमने डिस्कशन किया कि ये जो मधुमेह है या फिर उच्च रक्तदाब है उसको कैसे हम कंट्रोल करें या फिर क्यों बढ़ रही ये सारी बीमारियां, तो अभी जो मेंटल स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर?
2: मेरे जानकारी के हिसाब से आज के दिन में 7 में से 1% कोई ना कोई मानसिक समस्या के शिकार है. सो यू कैन इमेजिन द नंबर ऑफ पीपल हु आर लिविंग विद मेंटल, आई वुड नॉट से डिसऑर्डर्स बट एटलीस्ट विद सम प्रॉब्लम. इंडिया का सुइसाइड रेट भी बहुत ज़्यादा है. इसीलिए ये जो मेंटल हेल्थ वाला जो इशू है ये ट्रेडिशनली थोड़ा निगलेक्ट किया गया. हम लोग भी सोचते हैं कि ये, हम लोग बोलते हैं पागल है. पागल नहीं है, हम लोग सब स्ट्रेस्ड है और स्ट्रेस की वजह से मेंटल हेल्थ डिटोरिएट होता है. जैसे फिजिकल हेल्थ भी होता है, कभी कभी हम लोग बीमार रहते हैं, कभी अच्छा नहीं लगता बॉडीली, वैसे मेंटल उनका भी सेम ही इशू है. इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये स्ट्रेस का इशू है. स्ट्रेस रिलेटेड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होता है, इसका मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो इसीलिए हमेशा कोई भी काम के साथ स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी की ज़रूरत है. अगर कोई म्यूजिक में, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो म्यूजिक करे, किसी को पेंटिंग करना आता है पेंट करे, कुछ नहीं है तो फ्रेंड्स के साथ बातें करे. तो ऐसे टाइप का आप अपना जो अच्छे चीज जो लगे उसमें थोड़ा मेंटली डाइवर्शन बहुत जरूरी है. जब जरूरत पड़े दे शुड इमीडिएटली कंसल्ट डॉक्टर एज वेल, क्योंकि दे विल बी एबल टू हेल्प देम आइदर थ्रू काउंसलिंग और इफ रिक्वायर्ड थ्रू ड्रग्स. मोस्टली काउंसलिंग से ही बहुत चीजें सुलझा जा सकता है. सो ये बहुत जरूरी है. अभी जो हम लोग विकसित काल जो बोल रही है, अमृत काल में जो विकसित भारत का गोल्स है उसके हिसाब से हम लोग मेंटल हेल्थ में भी बहुत सारा स्ट्रेस दिया गया है. बिकॉज ये अमृत काल के बाद हमारे लोगों का जो एवरेज एज है, हम लोग बुढ़ापे के और जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगा. और एज में मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जो डिमेंशिया आता है, भूलने का आदत, सो ये आजकल बहुत जल्दी आने लगा है. थोड़ा और जाने के बाद वो अल्जाइमर्स टाइप का भी हो जाता है, तो कम्प्लीटली भूलने का जो आदत है वो हो जाता है. सो इसीलिए बट दिस आर मोस्टली प्रिवेंटेबल. इसका अगर हम लोग शुरू से ही हम लोग उसके लिए तैयार होते हैं कि हम लोगों को एक्टिव रहना है. एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो डेमेंशिया के लिए बताते हैं लोगों आपको कैलकुलेट करना या फिर थोड़ा पढ़ाई करना, तो क्या है अपना ब्रेन को यूज करना वो बहुत जरूरी है. इवन आफ्टर रिटायरमेंट पीपल शुड बी एक्चुअली इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि इसमें एविडेंस है कि आप जितने ज्यादा ये पढ़ाई लिखा किया हो कि या फिर आप करते हो तो उसमें आपका वो जो डिमेंशिया का ऑनसेट एज है वो डिले हो जाता है. एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप योगा करते हो कि कोई एक्सरसाइज करते हो वो भी डिमेंशिया को डिले करता है एंड इट हेल्प्स इन बस्टिंग स्ट्रेस ऑल्सो. तो इसीलिए दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर नाउ बींग प्रमोटेड प्रोमोटिव हेल्थ में. सो हमें बीमार होना ही नहीं है. सो द बेस्ट वे इज टू प्रिवेंट. और जो पहले का हमारा आउटलुक था कि हम लोग हमेशा डिजीज बेस्ड सॉल्यूशंस ढूंढते थे, अभी वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस इन विच वी डू नॉट बिकम डिजीज्ड, वी रिमेन फिट एंड हेल्दी. सो यही मंत्र है अभी.
1: बिल्कुल सर, युवाओं में ये जो बढ़ता तान तनाव है या फिर स्वास्थ्य समस्याएं ज्यादा पाई जाती है उसके बारे में क्या सलाह रहेगी?
2: ये जो मैंने बताया कि अमृत काल का हमारा जो टाइमलाइन है इसका वन ऑफ द रीजन इज दैट हमारा जो एज है, एवरेज एज है, वो बहुत यंग है, बहुत प्रोडक्टिव है. और इसी प्रोडक्टिव एज को सब मिलके अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो ही भारत का विकसित प्लान के हिसाब से जाएगा. तो इसीलिए जो ये जो युवाएं हैं ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप है हमारे पॉपुलेशन में, बिकॉज दे आर द मोस्ट प्रोडक्टिव ग्रुप. और दैट इज द रीजन व्हाई देयर हेल्थ बिकम्स सो वेरी इंपॉर्टेंट. दे हैव टू बी फिट एंड दे हैव टू बी एबल टू एक्चुअली वर्क एंड मेक टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल. तो इसीलिए दे मस्ट फॉलो दिस फ्यू प्रिंसिपल्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देयर हेल्थ थ्रू प्रॉपर डाइट, थ्रू प्रॉपर स्लीप, थ्रू बस्टिंग स्ट्रेस, तनाव कम करने के लिए, बाई having good habits, bringing in discipline in their life, avoiding substances for abuse and leading a good healthy lifestyle.
1: सर आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे कई सारे रील्स रहे या फिर कई सारे मैसेजेस रहे, वो देख के कई सारे अफवाह रहती है, वो देख के लोग उसको फॉलो कर देते हैं और उससे उनके हेल्थ पे मतलब साइड इफेक्ट भी देखे जाते हैं, तो इनसे हम कैसे बचे?
2: जो रील्स में आता है उसमें से ज्यादातर जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो गलत होता है और उसका कोई बेस नहीं होता है.
1: अच्छा.
2: सो पीपल शुड नॉट फॉलो ब्लाइंडली व्हाट एवर आर टोल्ड इन सोशल मीडिया एंड इन रील्स. दे शुड ओनली फॉलो दोज विच कम फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स. जो गवर्नमेंट का सोर्स रहता है कि एक्चुअल रिसर्च बॉडी जैसे ICMR का सोर्स है, इसी को ही माने. बाकी जो है दे शुड टेक ऑलवेज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. तो किससे सुन रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है.
1: करेक्ट.
2: क्योंकि सोशल मीडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोल देते हैं. हाँ, हो सकता है उन लोगों का रील्स ज्यादा शेयर हो, उनको वो स्टार बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बोल रहे हैं वो सही है.
1: करेक्ट. तो वो थोड़ा सा हमें स्टडी करके उस पे भरोसा करना चाहिए.
2: एग्जैक्टली. इसीलिए बेस्ट वे इज दैट जो ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट्स है, कि जो ऑथेंटिकेट सोर्स है, जो गवर्नमेंट का सोर्स है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का सोर्स है, ऐसे सोर्सों को बिलीव करें. और जो रिपोर्टेड इंस्टीट्यूशंस है, अगर KLE का ऑफिशियल हैंडल से कुछ निकलता है सो पीपल शुड बिलीव दैट. जो दूसरा इंस्टीट्यूट का, जो रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट का, उसका ऑफिशियल हैंडल से कोई आता कुछ निकलता है तो उसको दे कैन बिलीव. लेकिन नॉट जस्ट एनीबडी saying something और उसको believe करके और उसका follow करना वो सही नहीं है.
1: बच्चे और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है?
2: महिलाओं में particularly जो गर्भवती हैं, इन लोगों का health बहुत important है, बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ उनका ही नहीं, उनका जो fetus है, जो बच्चे पैदा होगा, उनके लिए भी बहुत important है. रेगुलर एंटीनेटल चेकअप होना बहुत जरूरी है इन लोगों के लिए. वैक्सीनेशन जो है वो लेना जरूरी है. जो IFA टैबलेट्स वगैरह जो आयरन के लिए जो दिया जाता है, फोलिक एसिड दिया जाता है, इसको कॉम्प्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं तो क्या है, बाद में उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है और बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकता है. जहाँ तक बच्चे का सवाल है, इन लोगों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो वैक्सीनेशन स्टिक से लें, जो भी वैक्सीन का रेजिमेन है. हाइजीन उनको लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि उनका इन्फेक्शन कुछ ना लगे, वो इम्पॉर्टेंट है. एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 6 मंथ ऑफ एज, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको फॉलो करना है. एंड न्यूट्रिशन के लिए भी, बोथ मदर एंड चाइल्ड का न्यूट्रिशन हमेशा एकदम अच्छा रहना चाहिए. पोषण ठीक से होना जरूरी है. इवन अदरवाइज जो एडोलेसेंट गर्ल्स है तो इनका भी अपना सेहत के ऊपर स्पेशल ध्यान देना चाहिए, पर्टिकुलरली विद देयर न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल.
1: इसी के साथ सर, क्या नियमित स्वास्थ्य जांच आवश्यक है?
2: डेफिनेटली. सबको जो 30 इयर्स के ऊपर है उनको तो नियमित स्वास्थ्य जांच करना जरूरी है. हम लोग कभी कभी देखते हैं कि हम लोग लोगों को देखते हैं कि दे आर फिट, लेकिन कभी उनका BP लेने जाएंगे तो देखेंगे कि ब्लड प्रेशर है. सो क्या है, समटाइम्स पीपल डू नॉट नो दैट दे हैव हाई BP.
1: करेक्ट.
2: बिकॉज दे हैव नॉट चेक्ड. तो ये बहुत जरूरी है. सिमिलर थिंग विद ब्लड शुगर ऑल्सो, कि प्री डायबिटिक स्टेज में बहुत सारा लोग पाए जाते हैं जिनको पहले पता ही नहीं था कि वो प्री डायबिटिक है. इवन डायबिटिक जो है उनको भी कभी कभी पता नहीं होता है कि वो डायबिटिक है बोल के. तो इसलिए ये जितना जल्दी इसको हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से वो ठीक हो सकता है. लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो गया डिटेक्ट करने में तो देन मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ता है. लाइफस्टाइल चेंजेस करना बहुत रिगरस होता है, वो डिफिकल्ट होता है. तो इसलिए जितना जल्दी टेस्ट करेंगे, जितना जल्दी उसको डिटेक्ट करेंगे, यू कैन एक्चुअली मैनेज दैट और इवन रिवर्ट बैक फ्यू लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस.
1: ओके. सर, स्वास्थ्य क्षेत्र में नई तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है?
2: आज के दिन में AI और टेक्नोलॉजी इज ड्राइविंग एवरीथिंग इंक्लूडिंग हेल्थ और इंक्लूडिंग हेल्थ रिसर्च. मैं सिंपल सा एग्जांपल दूंगा. ये जो डिजिटल और जो डिजिटल हेल्थ का है, ये जो भी आजकल का स्कीम्स जो लॉन्च हो रहा है, चाहे वो इंश्योरेंस का हो कि वैक्सीनेशंस का हो, सब आपके साथ आधार के साथ लिंक रहता है. एक ही जगह में आपको इमीडिएटली डेटा मिल जाएगा कि किसने क्या वैक्सीनेशन लिया है, कि कब लिया है, उसका कुछ डोज बाकी है कि नहीं। हम लोगों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था, ये मैं 10 साल पहले का बात कर रहा हूँ, जब हम लोग पहली बार बहुत सारा केसेस ऑफ डिप्थीरिया डिटेक्ट किया बीजापुर और बागलकोट एरिया में। अब हम लोग जब उनका वैक्सीनेशन हिस्ट्री लेने गए, उन लोगों को दे आर अनेबल टू टेल कि उन्होंने वैक्सीनेशन लिया था कि नहीं लिया था, कब लिया था, कितना डोज लिया था, बता नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी नहीं था। कार्ड दिया जाता था लेकिन कार्ड में कितना एंट्रीज है डिजिटली कहीं पे रिकॉर्ड नहीं है, कार्ड खो गया तो खो गया। सो ऐसे होता है, लेकिन दीज आर ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, लोगों को मरना नहीं चाहिए इसमें। लेकिन एक बार ये सब डिजिटाइज हो गया, देन यू कैन एक्चुअली गेट बैक योर डेटा वेरी इजीली। तो आपका चाहे वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस का हो, आपका ट्रीटमेंट का प्रोफाइल हो, सब कुछ ये टेक्नोलॉजी हेल्प करता है। टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प्स इन डिजाइनिंग न्यू थेरेपीज, इन डिटेक्शन। आपका इतना सारा अभी गैजेट्स आ रहा है, अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक गैजेट डेवलपमेंट स्टेज में है, आईआईटी दिल्ली के साथ आईसीएमआर काम कर रहा है, वो एक वेयरेबल हेलमेट है जो टू व्हीलर में आप चल के अगर जाओगे, अगर आपको आप गिर गया फिर कोई सर पे चोट लगा तो दैट हेलमेट में ही सेंसर्स है, इट कैन एक्चुअली टेल यू कि आपको हिमरेज होने का चांसेस है कि नहीं है। सो इट कैन बी सच अ लो कॉस्ट एंड सच पोर्टेबल थिंग, आपको हमेशा उसके लिए MRI करने के लिए लेके जाने का जरूरत नहीं है, एटलीस्ट स्क्रीनिंग के लिए तो ये यूज हो सकता है अर्ली स्टेज में। Correct. लेकिन ये दीज आर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट आर कमिंग। इसके साथ आप AI डाल दीजिए, तो एक बार इसका AI के लिए भी तो हमें डेटा चाहिए, तो ये डिजिटल डेटा, अगर जितना ज्यादा हम लोग डिजिटल डेटा जनरेट करेंगे उसके ऊपर हम लोग AI लगा सकते हैं और उसका जो इंटरप्रिटेशन एबिलिटी है, जो उसका रोबस्टनेस है, वो बढ़ता रहेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, ये हर फील्ड में हो रहा है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हिच इज मोस्ट वेलकम।
1: अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है सर, इतना बड़ा बदलाव फिर देख पाएंगे हम अगर वो यूज में आ गया तो।
2: ये आ जाएगा कुछ सालों में ही ये सब आ जाएगा।
1: अच्छा, डिजिटल हेल्थ सेवाएं भविष्य में किस प्रकार मदद करेंगी सर?
2: मैंने जैसे बताया कि डिजिटल हेल्थ होने से क्या है, एवरीथिंग बिकम्स योर कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड्स, सब रिकॉर्ड्स में रहता है।
1: करेक्ट,
2: मैंने जैसे बताया कि डेटा ही ड्राइव करता है हमारा पॉलिसी, हमारा एविडेंस, ये सब एक साथ आप चुटकियों में आप डेटा निकाल पाएंगे और क्या जरूरत है उसके ऊपर काम कर सकते हैं। कोई एक पर्सन का भी अगर मेरा पूरा हेल्थ डेटा एक जगह में रहा, कोई भी डॉक्टर मुझको मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट दवाई हो सकता है या फिर कुछ रेमेडी हो सकता है वो सजेस्ट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
2: हम लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन में काम करते हैं, ये आजकल ऐप आ गया है, ये आयुर्वेद का आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो वाता पिता कपा है का वो जज करने के लिए ऐप्स आ गया है, तो ये बिकम्स मच इजियर और आप उसमें डालेंगे और उसके हिसाब से आपका जो डॉक्टर्स जो प्रेस्क्राइब करेंगे वो आसानी हो जाता है। सो ये जस्ट एक एग्जांपल मैंने बताया, ऐसे बहुत सारा चीज है जिसमें डिजिटल हेल्थ इज एक्चुअली हेल्पिंग। देन इंश्योरेंस सेक्टर में तो है ही, तो बहुत सारा जो स्कीम्स आ रहा है जो पर्टिकुलरली फॉर द पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, इट विल बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर एक्चुअली यूजिंग दिस हेल्थ टेक, डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ केयर।
1: ICMR की भविष्य की योजनाएं क्या है?
2: अभी क्लासिकली हम लोग इंडियंस हर चीज में प्रॉब्लम्स ढूंढने में बहुत माहिर है, लेकिन सॉल्यूशंस देना बहुत डिफिकल्ट होता रहा है। सो अभी हमारे पास प्रॉब्लम्स बहुत कुछ है, इतना बड़ी देश है, इतने लोग हैं, अभी फोकस आ रहा है सॉल्यूशंस ढूंढने में। सो दैट इज वन मेजर फोकस मैं बोल सकता हूँ इन जनरल, कि हम लोगों का एक एक प्रॉब्लम्स को लिया जा रहा है एंड इसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढा जा रहा है। एंड दिस सॉल्यूशंस आर नॉट ओनली रिलेटेड टू पीपल हु आर इन टू हेल्थ रिसर्च, ये इंजीनियरिंग सेक्टर भी कर रहे हैं, IITs में भी इसमें सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, ये यूनिवर्सिटीज भी इसका सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। सो दैट इज वन मेजर चेंज दैट हैज हैपेंड। सेकंड मेजर चेंज इज द एरियाज, मैंने बताया अभी जो हमारे लाइफस्टाइल चेंज हुआ है इसके वजह से जो नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चाहे हमारा स्क्रीन टाइम का क्यों ना हो, ये जो डिजिटल, ये जो हमारा लाइफस्टाइल में हम लोग जो हमारे वर्क रिलेटेड जो स्ट्रेस है उसका क्यों ना हो, या फिर इवन इन्फेक्शस डिजीजेस में ये महामारी टाइप का अगर कोई पैंडेमिक आ गया तो उसका प्रिपेयर्डनेस क्यों ना हो, तो ये सब के लिए हमारा कैपेसिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों बनाया जा रहा है। मैं कोविड का एग्जाम्पल दे के बताता हूँ, दैट वॉज अ आई ओपनर। हम लोग तो बहुत जल्दी फर्स्ट इन द वर्ल्ड काइंड ऑफ वैक्सीन बना दिया इतना जल्दी में, अभी हमारा पास BSL-4 का जो एक लैब था, अभी दुनिया का, अभी इंडिया का बहुत सारा जगह में BSL-4 लैब्स बन रहा है, ताकि ये डेमोक्रेटाइज हो जाए हर जगह में, दे बिकम कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग कोई भी कितना भी डेंजरस वायरस क्यों ना हो, उसको डिटेक्ट करके उसका सोल्यूशन निकालने में सक्षम हो। सिमिलरली ह्यूमन रिसोर्स जो काम कर रहे हैं उनको भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ताकि दे आर एबल टू केटर टू द नीड व्हेनेवर दिस काइंड ऑफ थिंग्स अराइज। तो बोथ इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में ये सब चेंजेस दिखने को आ रहा है।
1: अच्छा, स्वास्थ्य अनुसंधान में करियर बनाने वाले विद्यार्थियों के लिए क्या अवसर है सर?
2: मैं तो कहूँगा ये एक बहुत एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है, करियर इन हेल्थ रिसर्च एंड इन हेल्थ टेक्नोलॉजीज। जैसे कि ICMR के हर इंस्टीट्यूट में वेरियस प्रोग्राम्स रहते हैं फॉर स्टूडेंट्स, इंटर्नशिप प्रोग्राम रहते हैं, जो बच्चे बैचलर्स के बाद या फिर प्रेफरेबली मास्टर्स के बाद इंटर्नशिप करना चाहते हैं वो अप्लाई करते हैं, वो आके अपने हिसाब से दे कैन डू द इंटर्नशिप, चाहे 2 महीना का हो, 6 महीना का हो, 1 साल का हो। सो उसमें उन लोगों को वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिलता है रिसर्च में। उसके ऊपर आता है PhD प्रोग्राम। ICMR का बहुत स्ट्रांग PhD प्रोग्राम है, ये हमारा ACSIR के साथ टाई अप है। ICMR फैकल्टी ऑफ मेडिकल रिसर्च में आता है अंडर द ACSIR फॉर अवार्ड ऑफ PhD डिग्रीज। इसमें फेलोशिप भी बहुत अच्छा मिलता है और उसके साथ साथ उनका PhD करने का अवसर मिलता है। दे कैन चूज एनी इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द ICMR नेटवर्क इन द कंट्री। ये दूसरा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके तरह ही मेरिट लिस्ट बनता है। okay. और जो टॉप रहते हैं मेरिट में तो दे कैन चूज देयर इंस्टीट्यूशंस सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स एंड दे कैन गो देयर एंड डू द PhD। PhD होने के बाद पीपल कैन कम एज पोस्ट डॉक्टरल फेलोज। बहुत सारा फेलोशिप्स वगैरह मिलता है वेरियस ICMR इंस्टीट्यूशन में। और अगर दे वांट टू बिकम परमानेंट फैकल्टी, हम लोगों का जो साइंटिस्ट है, हम लोगों का हेल्थ रिसर्च साइंटिस्ट कैडर में हम लोग आते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च का है, तो इसका एडवर्टाइजमेंट होता है, सेंट्रल रिक्रूटमेंट होता है। तो दे कैन अप्लाई व्हेनेवर दिस वैकेंसीज आर डिक्लेयर्ड। सो इट कम्स इन द ICMR एंड द इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट्स, इट कम्स इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, रोजगार समाचार में आता है, उसमें वो देख के उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये तो डायरेक्ट ICMR का हो गया, ये छोड़ के जो हेल्थ रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है अक्रॉस अदर देन ICMR ऑल्सो, बहुत सारा ICMR का प्रोजेक्ट चलता है बहुत सारा हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में। मॉडल रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट्स होता है जो DHR के अंडर आता है, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट्स है जो मेडिकल कॉलेज में के अंदर है, वहाँ पे भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है जो ICMR और DHR फंडेड है। इसके सिवाय इंस्टीट्यूशंस में भी आजकल रिसर्च का बहुत महत्व दिया जाता है, तो उसमें रिसर्च सेल्स, रिसर्च यूनिट्स बनाया जाता है जिसमें स्पेसिफिकली फॉर रिसर्च अपॉइंटमेंट्स किया जाता है एट वेरियस लेवल्स, उसमें भी आ सकते हैं।
1: यानी कि काफी अपॉर्चुनिटीज है,
2: काफी है और ये बढ़ रहा है।
1: युवा वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मैं तो कहूँगा रिसर्च एक ऐसा चीज है वेयर यू कैन फॉलो योर ड्रीम्स, यू कैन ड्रीम एंड यू कैन फॉलो द ड्रीम। तो आप अपना हिसाब से आपका सपना देखो और वो जो सपना है उसको साकार करने के लिए आप रिसर्च को ले लो। और ये एक हमारा एक ही प्रोफेशन है जिसमें आप बताते हो कि आप क्या करोगे, ऑफ कोर्स मेन मैंडेट में होना है, लेकिन आप बताते हो कि आप क्या करोगे, उसके लिए आपको फंड्स मिलता है, चाहे सरकार से हो कि कोई अदर फंडिंग एजेंसी में। तो आपको आपका काम, आपका सोच को साकार करने के लिए पैसा दिया जाता है, आपको सैलरी दिया जाता है और उसका जब रिजल्ट निकलता है वो भी आपके नाम से पब्लिश करते हैं।
1: करेक्ट।
2: और नॉट ओनली दैट, इफ योर पब्लिकेशन एंड इनोवेशन इज गुड इनाफ, आपका जीवन के बाद भी आपको हमेशा याद किया जाएगा और जो सब्सिक्वेंट लोग है वो भी आपका नाम कोट करेगा, आपका पेपर का हो कि इनोवेशन। ये मौका किसको मिलता है?
1: बिल्कुल।
2: तो ये भी देश का ही सेवा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमेशा रिसर्च को एक करियर बनाओ, और इसमें हर चीज, हर दिन एक नया चैलेंज होता है तो मोनोटोनी नहीं आता है और आप अपना ड्रीम को परसू कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। आखिर में सर, हमारे श्रोताओं के लिए आपका क्या विशेष संदेश रहेगा?
2: मैं कहूँगा कि जो ये हेल्थ

0: बहुत बड़ी प्लान्स है, जो हील इन इंडिया प्रोग्राम है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, इसको सब इकट्ठे आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटीज आता है ये हेल्थ सेक्टर का। और इसमें वी इनवाइट एवरीबॉडी टू कम टुगेदर, बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी एंड लेट अस टुगेदर मेक इंडिया वेरी बिग एंड वेरी हेल्दी कंट्री अंडर द विकसित भारत 2047।
1: थैंक यू सो मच सर, इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने के लिए आपने समय दिया उसके लिए
0: धन्यवाद। थैंक यू।
1: ये था आज का विशेष प्रोग्राम जो आपके लिए वेणुधुनी 90.4 FM पे सुन रहे थे। डॉक्टर सुबर्णा रॉय हमारे साथ थे, जो ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन के डायरेक्टर एवं साइंटिस्ट हैं। कैसा था आज का एपिसोड मुझे जरूर बताएगा। नंबर है 9019904904। मनीषा फिर हाजिर होगी एक नए प्रोग्राम के साथ, पर तब तक आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 FM KLE कनसु। नमस्कार।

हेलो नमस्कार मित्रों दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास चकाचक और जिंदाबाद होंगे। दोस्तों लगता है आज का मूड देखकर कि एकदम सब धमाल मूड में है, और जहां धमाल मूड की बात आती है वहां आती है रिलैक्सेशन की बात, और रिलैक्सेशन की बात आती है वहीं आती है हमारे शो बी रिलैक्स की बात, जो आता है ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसू पर। और मैं हूं आप सभी का प्यारा दुलारा हैंडसम दोस्त यानी कि आरजे आयुष, और मैं हूं आपसे करने वाला आज बात कुछ एक ऐसे टॉपिक पर जिससे सबका मूड एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है। भैया देखिए, हमारी इंडियन फैमिलीज में तो कहीं बाहर जाने का मतलब ही खाना होता है, और फिर आपको पता ही है इंडियन फूड से अच्छा और कुछ भी नहीं। तो आज करेंगे बात हम आज इसी टॉपिक पर जिसका नाम है द क्रूजींस ऑफ इंडिया। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसू पर।

हेलो एंड वेलकम बैक वन मोर टाइम टू योर फेवरेट शो बी रिलैक्स। और आपने ट्यून किया है वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु। हमारी बात चल रही है आज इंडियन क्यूजींस पर। दोस्तों देखिए, भारत जो है वो भूमि है कल्चर्स की, ट्रेडिशंस की, रिश्तों की, और इस इनक्रेडिबल डेज की डिशेज जो है वो रिफ्लेक्शन है यहाँ के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मल्टी कल्चर इन्फ्लुएंसेस की। फ्रॉम द बुसिंग स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई टू द सीनरी बैकवर्ड्स ऑफ केरला, द फ्लेवर्स ऑफ इंडिया आर एज वेरीज एज इट्स लैंडस्केप्स। दोस्तों हमारे भारत देश में हर त्योहार, हर इवेंट या हर खुशी के लिए एक अलग और स्पेसिफिक डिश है जो पूरा परिवार सेलिब्रेट करने के बाद एंजॉय करता है। और फिर चाहे वो पूरन पोली हो या बिरयानी, हमारे हाथ जो है रोके नहीं रुकते हैं। लग रहा है मेरे साथ साथ आपकी भी जीभ ललचा रही है, तो चलिए इस ललचाहट को थोड़ा और बढ़ाते हैं और करेंगे बात आगे इसी टॉपिक पर और सुनाएंगे आपको कुछ जबरदस्त गाने। तो बने रहिए हमारे साथ वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु पर।

Hello, welcome, welcome, welcome back, ladies and gentlemen, and people of all ages to our prime show, Be Relax, जिससे सुनकर आप हो जाते हैं एकदम relax और stress free, और वो तो होंगे ही क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं Indian food यानी Indian खाने के ऊपर, Indian cuisines के ऊपर। दोस्तों जब भी Indian खाने की बात आती है वहाँ flavors और मसाले का जिक्र बिल्कुल होता है क्योंकि यही वो राज है जो हमारे खाने को एकदम अलग और स्पेशल बनाता है। At the heart of Indian cuisines lies its remarkable uses of spices, एकदम सुगंधित मसाले जैसे जीरा, धनिया, हल्दी, ये इलायची, इन सबको अलग अलग कॉम्बिनेशन में ब्लेंड करके यूनिक फ्लेवर्स बनाए जाते हैं जो हम यूज करते हैं हमारे इंडियन डिशेस में। अब देखिए इंडिया में इतने सारे रीजन है और हर जगह अपने अपने तरीके से लोग मिश्रण बनाते हैं और स्वाद का आनंद लेते हैं यानी मजा लेते हैं। आप में से भी कई लोग मसाले के बहुत ज्यादा शौकीन होंगे, कभी खाने में चाट मसाला तो कभी गरम मसाला तो कभी, खाने को चटपटा बनाने के लिए नमक और नींबू का इस्तेमाल। आखिर भैया स्वदेशी तो हम है ही। चलिए बताऊंगा मैं आपको कुछ रीजनल डाइवर्सिटीज के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं करूंगा आपका मनोरंजन और आपको सुनाऊंगा एकदम धमाकेदार संगीत। तो सुनते रहिए मेरे साथ वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

0: हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आप सभी के पसंदीदा शो बी रिलैक्स में। और आप ट्यून कर चुके हैं बेलगावी का सबसे बड़ा और पहला रेडियो स्टेशन वेणुध्वनि 90.4 KLE कनसु, और मैं हूँ आप सभी का प्यारा RJ आयुष। दोस्तों, इंडिया के वास्ट होने का पता लगाया जा सकता है उसकी फूड वेराइटीज और फूड डाइवर्सिटी से, क्योंकि हर जगह की एक अपनी फेमस डिश होती है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट रीजन हैज इट्स ओन कल्चररी आइडेंटिटी, जहाँ नॉर्थ में आपको मिल जाएगी एकदम छठाकेदार बिरयानी और गर्मा गर्म कबाब, वहीं साउथ आपको ऑफर करता है राइस मेड डिशेस लाइक इडली डोसा, जिसको सर्व किया जाता है नारियल की चटनी और सांभर के साथ। जी मैं पानी आने लगा है लगता है। द वेस्टर्न कोस्ट गिव्स अस सी फूड रिच डिलाइट्स लाइक गोवन विंडोल्स, और वहीं ईस्ट में मिलती है फ्लेवरसम फिश करीज एंड स्वीट्स लाइक रसगुल्ला। इन सारी डिशेस को सुनकर आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। चलिए आप अपनी फेवरेट डिशेस के बारे में भैया कर दीजिए अपने घर में फरमाइश, और बने रहिए हमारे साथ हमारे शो बी रिलैक्स में ओनली ऑन वेणुध्वनि 90.4 KLE कनसु पर।
1: हे जिरे झटपट पर उलट पलट नटखट झट लटक मटक लचक मचक चाल चलत जा।
2: ए छोरा गांडा थई गया।

0: सारे जहां से अच्छा, कांट इवन अफोर्ड अ ब्लडी कच्चा, आई डोंट ट्रस्ट द इंडियंस,
1: सॉरी,
0: एग्जैक्टली।

0: babe, कितने मिनट हो गए?
1: 2.5 minutes.
0: How the long should it be?
1: 10 inches.
0: You bloody Pauli cum. I mean the songs.
1: Oh, 4.5 minutes.
0: इतने शब्द नहीं है मेरे पास. एक काम करो, यहाँ एक म्यूजिक पीस घुसेर दो.
1: Sorry.
0: Exactly.

0: But on the other hand, एक ईमानदार तो बाकी है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन कायम तो चूरन भी है।
1: सॉरी
0: एग्जैक्टली exactly.

नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द शो। और आपकी फरमाइशों के साथ हम बात करेंगे आज कुछ स्ट्रीट फूड्स के बारे में। और आपने ट्यून कर लिया है बलगावी का सबसे बड़ा और पहला रेडियो स्टेशन वेनु ध्वनि 90.4 के LE कनसु और जे आयुष के साथ। बात करते हैं स्ट्रीट फूड एक्स्ट्रा।

फूड फेवरेट होंगे आजकल तो भैया हर चीज घर पर ही एक्सपेरिमेंट हो जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं कि भैया हम लोग बाहर का खाना खाएं। अब देखिए खाने की बात हो रही है और साथ में मनोरंजन ना हो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि मैं सुनाने वाला हूँ आपको कुछ दिल को छू जाने वाले गाने ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसू पर।

0: हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। इतने प्यार के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आज हम बात कर रहे हैं भारतीय व्यंजनों के बारे में, यानी इंडियन क्विजींस पर। दोस्तों, रीजनल और स्ट्रीट फूड की बात तो कर ली, अब हम बात करते हैं उन रिचुअल्स की, ट्रेडिशंस की, यानी अलग अलग ओकेशंस की जहां हम अलग अलग तरह का खाना बनवाते हैं। दोस्तों, इंडियन फूड इज नॉट ओनली अबाउट टेस्ट, बट इट्स अबाउट द रिचुअल्स दैट सराउंड्स इट। फ्रॉम द एलाबोरेट फीस्ट ऑफ वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स टू सिंपल शेयरिंग अ मील विद अ फैमिली, फूड भी उन चीजों में एक हो गया है जो हमें एकदम जोड़े रखता है, साथ में कनेक्टेड रखता है। और कई ऐसी ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं जो पास ऑन होती है जनरेशन टू जनरेशन। भैया, अगर कोई नानी है या कोई दादी है, उन्होंने कोई डिश की रेसिपी एक्सप्लोर करी है, वो जाती है उनकी बेटी को, देन उनकी बेटी को, तो जनरेशन में पास ऑन होती है, विच प्रिजर्व नॉट ओनली द ओरिजिनल फ्लेवर्स बट द टेस्ट ऑल्सो द स्टोरीज एंड द हेरिटेज ऑफ पीपल। और दोस्तों, जैसे कि आप भी जानते हैं, हमारा खाना सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा फेमस। कई सारे मसाले और फूड तो एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं, जिससे हर इंसान उसका लुफ्त उठा सकता है। और अब आप लुफ्त उठाइए कुछ जबरदस्त गानों का और सुनते रहिए हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसू पर।
1: कोड बोल बगर ए पौंडी सांगरे सुनिया।

हेलो, क्या बात है। बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। और आप सुन रहे हैं वेणुध्वनि 90.4 KLE कनसू विद RJ आयुष। दोस्तों, जैसे इंडियन फूड जितना स्वादिष्ट है उतना ही इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी है। यानी सिर्फ ये हमारे टेस्ट बड्स को ही नहीं सेटिस्फाई करता, बल्कि मसाले जैसे हल्दी या जिंजर गार्लिक इज नॉट ओनली फॉर फ्लेवर्स बट ऑल्सो फॉर देयर पोटेंशियल मेडिकल प्रॉपर्टीज। आयुर्वेदा, जिससे हम जानते हैं एंशियंट इंडियन मेडिसिन सिस्टम के नाम से, विच एम्फेसाइजेस द बैलेंस ऑफ फ्लेवर्स and nutrition in meals to promote all over well-being। और दोस्तों, आजकल इंडियन डिशेस को किसी और डिश के साथ मिक्स करके अलग-अलग रेसिपीज भी हर रोज बनाई जा रही है। Imagine a fusion of Indian spices with our international cuisines like Mexican, Italian or Japanese. This blending of flavors creates an exciting culinary landscapes that's constantly evolving. सोच कर ही मजा आ रहा होगा। चलिए मजे को करते हैं एकदम दुगना और पेश करते हैं आपके लिए एकदम जबरदस्त चटाकेदार हिंदी गाने। सुनते रहिए हमारे साथ वेणुध्वनि 90.4 KLE कनसू।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर और आप सुन रहे हैं हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेनु धोनी 90.4 KLE कनसू। मैं और मैं हूँ आरजे आयुष आपके साथ हमेशा बना हुआ। और दोस्तों, जब इंडियन फूड में ट्रेडिशन और रीजन की बात आती है तो हम कैसे भूल सकते हैं उन ओल्ड टेक्निक्स को जो खाने को एकदम जबरदस्त, तगड़ा और चटाकेदार बनाती है। टेक्निक्स जैसे स्लो कुकिंग इन अ क्ले पॉट, जिसको हम लोग हांडी के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग हांडी में बनाते हैं, स्पेशली बिरयानी इसमें बनाई जाती है। द आर्ट ऑफ तंदूर इन्वॉल्व्स कुकिंग इन अ क्ले ओवन, जिसमें मोस्टली तंदूरी रोटी, नान और मीट बनाया जाता है। कोस्टल डिशेस ऑफन प्रिपेयर्स यूजिंग कोकोनट मिल्क, व्हाइल इन द नॉर्थ दम कुकिंग इन्वॉल्व्स स्लो कुकिंग इन अ सील्ड पॉट टू इन्फ्यूज फ्लेवर्स। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आप भी अपने तरीके से ट्राई कर सकते हैं इन इंडियन रेसिपीज को और इनकी कुकिंग टेक्निक्स को। उम्मीद है आज का ये चटाकेदार एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपकी भूख को और ज्यादा बढ़ा दिया होगा। जल्द मिलेंगे ऐसे ही टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खाइए बहुत सारा इंडियन फूड और करिए अपनी हेल्थ को एकदम ठनठनाट। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप सुनते रहिए वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसू आरजे।

सिस्टम के खिलाफ चलता है उसे अंडरवर्ल्ड का नाम दिया जाता है। आज के दिन पुलिस ये दावा करती है कि उसने अंडरवर्ल्ड को खत्म कर दिया है, लेकिन पुलिस और नेता दोनों को ये समझना चाहिए कि जब तक सिस्टम से नाखुश लोग रहेंगे और समाज में गरीब और अमीर के बीच अंतर रहेगा, तब तक दुनिया की कोई भी पुलिस अंडरवर्ल्ड को खत्म

और इतिहास गवाह है कि हर एक नए अंडरवर्ल्ड की शुरुआत कभी ना कभी सिर्फ एक आदमी ने किया है। अब 2013 में एक नए अंडरवर्ल्ड की शुरुआत ये आदमी जो अभी अभी ट्रेन से उतरा है ये करने वाला है। इसका नाम है

शहर के नामी रईस और इस खेल के कुछ पुराने चावल, ये सब समझ गए थे कि सत्या में कुछ नहीं बहुत कुछ है, कुछ ऐसा जिसकी वो इज्जत करने लगे और कुछ ऐसा जिससे वो डरने लगे। सत्य की उन्नति बस एक पॉलिसी पे जोर से बढ़ने लगी और वो पॉलिसी थी ताकत की असली पावर उसको छुपा के रखने में।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

मुनी 90.4 के LE कनसु पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुली 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है यादों के बारात, हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ट्वेंटी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 की LE कनसूबे आप ट्यूने यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

पुणे 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

रहा है। और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।
1: या

प्यारे, जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।